पाद हमरे दुष्ट सब तुम काबहो आप हाद मोहे बचाबहो सुखी बसाई मोरो परवार सेवक सिख सब।

अवरण त्यं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है आप हाद मुझ अबरिया मरण काल का त्राव सुनवरिय हो जो सदा हमारे पछाओ श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा राख ले हो मोह राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चातुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जपन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हमारा जपन काल सब जगत बनायो देव दैतो जछन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्ठी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाने कट कट के पड़ पड़ की जाने जबद कर करा करता रहो प्रजा तरत तब देह पारा दबया कर कर तुह कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं।

कहूं सिमट भयो शंकर अकैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप सयंभव, अवरक्षा मेरी तुम करो, सिख बारो सिख संग्रो, दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख हमरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तुमके तिनके तुम संकट समटारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुई ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाह हर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा छप सके न कोई,

तुम साहि बैंकिंग कर था राम दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरूं भगवत को त्यानाऊं बहर करूं कविता विदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र चारु चूक होई कब लियो सुधारु कबियो बाच दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहा सो कहूं जग माहि जो ते प्रभु को त्याए है अंत सुर को जाहि दोहरा हर हर जन दुई एक है बेबिचार कठ नाहि जल ते उपतरंग जऊं जल ही बिखै समाए दोहरा जब आइस प्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा सुन छिपते सबहु कहत सुनाए काबा च दोहरा टाट पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चलन तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहंगे मुक्त फल पावहंगे भगवंत दोहरा काल पुर की देह मोह कोट को बिसन महेशो कोटिंद्र ब्रह्म किते राम सस्करोट जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुर्ग बास रगबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुनै अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै बिस्न भगत की ए फल होई आदमे अछब सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लहु लिओ सुधारा दोहरा नेत्र तोंके चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग

पाए गह जब ते तुमरे तब ते को अंक त्रै नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्य सिमरत शास्त्र वेद सबाइन बहु भेद कह हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार

उधारूं। एह वस्तु तजी न जाई नितन तराख उर तारू तम संसारू चरण लग तरिय सब नानक।

मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदाओं कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन

Baru-baru ganti honor berpajak. Pan gan pranam munman salam harnar khan barnar amandau gan pahunas munman prakas gun gan pranam jal thalmadam anche je angasan pang upma par gatme tu daru jal thal amand disvis pan jal thal mahant disvis bhyant gan pahunas utre tatras ajan bahu ikas dahu omkar adu kathni anadu khalkhan khyal gur bar kal kar kar pranam chit chan nam anche je gat ajajna bat anchand gat anand bat an tot pandar an tat par adit dharm at tit karm an abdan anant data mahant har bol mana chamdo ta prasad करणालय है अर्कालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के धन है जाके कर्ण है मन मन है जग जन है सर्व पर है सर्व कर है सर्व पास है सर्व नाश है करण कर है बेस्व पर है सर्व बेस्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणा कर है जप जप है थप थप है कृत कृत है अमृत अमृत है अमृत अमृत है कृत कृत है अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है अकृत कृत है धरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृत कृत है अमृत अमृत है अजबा कृत अमृत अमृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्णायक है सर्वपायक है निर्णायक है सर्वपायक है भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वा कृता कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है आत्मवास है जस की जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह तम सिंह सत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पानी नमो कलह कर्ता नमो सत रूपे नमो इंद्र इंद्रनादन विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशा से नमो भांक बंके

श्लोक मतलब पहला कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़े कुड़ बैसनहार कुड़ सोयना कुड़ रूपा कुड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़

दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारे आ जी जंत सब वास तेरा सारे आ मन गुण गाए जीवा हर न हर जप जपो बनवारी आ तेरा दर लई जी दास पुरख तो लई जीओ संत रसन बूठा पतूठा हर रस है से मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा आनंदिन जागे आ सद सदा सिमरताबे स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ हनुमान सर गरड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार बेदार सिमरित पुराना कमला पात कबला नहीं जाना कह कबीर सो भरम नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते करियां आव कटै तन छीजै काल अहेरी फिरै बदक जौ कहो कवन बिद कीजै सो दिन आमन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है का रहाओ जब लग जोत काया मह बरता आपा पशु न बूजै लालच करै जीवन पद कारना लोचन कछु न सूजै कहत कबीर सुनहो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपहो रे प्राणी परहो एक की सरना जो जन पाओ भगत कछ जाना ताको अचरज काहो जो जल जल मह पैसना निकसै त्यो टुर मिल्यो जुलाहो हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन कंसी तुजै कबीरा रमैया कहा निहूरा रहाऊ

0: विष्टाग्र में है। मुझ अडंबर हब के हो मांझ मोहब्बत ने सोई साई जय विसरे नानक सो तन खे हो बौड़ी। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा किछ नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे। बिन हर नाम न शांत होए कित बिध मन धीरे।
1: सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी देह दिस है आगंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संगम है। मन साई मुख उचरा बता बेलो नानक हब डंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए। पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात नाम पत ना दरो ध्यान परमिन्ना। मित्र नैठ धन रूपहीन किछ साक न सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना। तिसकी धूड़ मन उदरा प्रभ हुए सो प्रसन्ना। श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञानंद है नानक सुपन मनोरथ माया। सुपन हब रंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूनी आ सुंदर माया त्रोह। पौड़ी सुपने से चेता मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया आरजा गई विहाय तंदा ताया पूर्ण पहे न काम मोहया माया। क्या बेचारा जंत जाप भुलाया। श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है। कौतक कोड तमासया चितना वसनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ। पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर जमानिया झूठ समगरी पेख सच कर जाने आ। काम क्रोध अहंकार फिर है देवाने आ सिर लगा जम डंड ता पछताने आ बिन पूरे गुरदेव फिर सैताने आ। सलोक राज कपटं राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है। संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चालते बेखंदड़ो की भुला तुम्मा दिस मसोहना। अड ना लहंदड़ो मोला नानक साथ ना जुलई माया। पौड़ी चलद्या नाल न चला सो क्यों संजी है तिसका कहो क्या जताना जिस ते वंजी है। हर बिसरया क्यों त्रिपतावै ना मन रंजी है प्रभु छोड़न लागै नरक समंजी है। हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजी है। श्लोक नच राज सुख मिष्टं नच भोग रस मिष्टं नच मिष्टं सुख माया। मिष्टं साध संग हर नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगड़ा सो नेहो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सो तनी। पौड़ी हर बिन कछु ना लाग गई भगतन कौ मीठा आन स्वाद सब फीकिया कर निर्नव डीठा ज्ञान भरम दुख कटिया गुर भई बसीठा। चरण कमल मन बेदिया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिन से सब झूठा सलोक त्यागत जलंग नह जीव मीनंग नह त्याग चात्रिक मेघ मंडल है बाण बेदं चुकुरंक नादंग अल बंधन कुसुम बासन है चरण कमल रचंत संत है नानक आन न रुचते मुख देखाऊ पलक छड आन न देऊ चित जीवन संगम तिस्तनी हर नानक संता मित पौड़ी जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै बूंद विहूणा चा त्रिको क्यों कर त्रिपतावै नाद कुरंक है बेदया सनमुख उठ तहवै भवर लोभी कुसुम बासका मिलाप बंद हवै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्शग हवै सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास अराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मंजा हे पलक न थी वै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पिखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस गुसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू चूरी है देहो दर्स मन चाओ लह जाहे बिसूरी है होए पवित्र शरीर चरना तूहरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सद बलिहारं जिना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ा वे कम एक साई बाहरे नानक से तन जिन्ना पिर हड़ी सच सियो पौड़ी साध बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पुनीत पवित्र चाल प्रभ पथा

हर रमन संजोग पूरन है, गोपाल दर्श पेटं सफल नानक सो मुहूर्त है। कीम न सका पाए सुख मिति हु बाहरे, नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंद।

जा को पाक स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिल्यो भगतन कौ राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जनह नहीं निकटानी निरप होए रहे लिवेक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहा ब्यापा जा कोट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी नव खंडन को राज कमावै अंत चलै गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जा कहो कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभाप भुलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत ना एहो मन लायो बिग स्यो पेख रंग कुसुंभ को पर ग्रेह जो हन जायो चरण कमल स्यो पाओ न कीनो नह सत पुरख मनायो धावत को धावै बहुपाती जो तेली बल्द परमायो नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तोखियो नह बूझियो अपनायो पर पकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेव त्यायो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मदमायो करो बेनती साध संगत हर भगत वच्छल सुनायो नानक भाग परयो हर पाशा राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मानुख बिन बूझे बिरथाया अनक साज सीगार बहु करता जो मृतक उड़ाया रहाउ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया कर भरन सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया सारो दिन समजूरी करता तोहो मूसला है शराया खेद भयो बेगारी न्याई कर कै काम नाया भयो अनुग्रह हो जा को प्रभ को तिस हिरदा नाम वसाया साध संगत कै पाछै परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बस हो हृदय हरनीता तैसी बुद्ध करहो प्रगासा लागै प्रभ संग प्रीत रहाउ दास तुम्हारे के पावो तूरा मस्तक ले पलावो महापत देहोत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आग्या तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो भावो जो तू देहे तही ओ तृप्ता आनन कतहु तावो साध ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा धुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मागो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरा संग न चाला मिला कृपा गुण गाम रहाउ राजमाल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए बहुबिद को तावै सगल निरार्थ काम बिन गोविंद वर जे चाहो दीसा सगल बात है खाम कहो नानक संतरेन मागो मेरो मन पावै विश्राम
ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ ਸਾਧਾਰਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੂਖ ਇਸ ਮਨ ਕਉ, ਬਰਤਨ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਜਾਤ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਹ ਕਉ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਬੇਖ ਬਿਲਾਸ ਕਹੀਅਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਚਲਤ ਨ ਕਛੂ ਸੰਗਾਰਾ। ਇਸ ਟਮੀਤ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭੰਡਾਰਾ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।

0: हे अनंत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोला निर्वा कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर। काए रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिना छपायो। रहाओ पंडित होए का बेद बखाना, मूरख नाम देओ राम है जाना। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित पहे राम कहत ही। रहाओ राम संग नाम देव जन को, प्रतज्ञाई एकादशी व्रत रह काहे को तीर्थ जाई। पनित नाम देओ सोकृत सुमत भये, गुरमत राम कह को न बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल आछा, रहाओ कुंभार के कर हांडी आछा। राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी आछा। रांडी सांडी हांडी गो, बाणिये के कर हींग आछा। पैसर माथा सींग गो, देवल मध्य लीग आछा। लीग सीग हीग गो, तेली कै कर तेल आछा। जंगल मध्य बेल गो, मेली के माली के कर केल आछा। केल बेल तेल गो, संता मध्य गोबिंद आछा। गोकल मध्य श्याम गो, नामे मध्य राम आछा। राम श्याम गोबिंद गो, राग बैराड़ी महला चौथा। कर पहला दुप दे का ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन मन कथ कथा हर नाम, रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावै। भज गुरमत हर राम राम रहाउ। नाना ख्यान पुराण जासूतम, खट दर्शन गावै राम। शंकर करोड़ तेतीस त्यायो, नहीं जान्यो हर मरमाम। स्वर नर गण गंधर्व जस गावै, सब गावत जे तो पाम। नानक कृपा करी हर जिन कौ, ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको, गुर सतगुर दान देवायो। रहाओ तेस जन कौ, मन तन सब देव। जिन हर हर नाम सुनायो, धन माया संपै तिस देव। जिन हर मीत मिलायो, खिन किंचित कृपा करी जगदीश्वर। तब हर हर हर जस त्यायो, जन नानक कौ हर भेटे स्वामी। दुख होमै रोग गवायो, बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की। अपना गुण ना गवावै रहाउ, जो किछ करे सो आपे स्वामी। हरे आपे कार कमावै, हरे आपे ही मत देवै स्वामी। हरे आपे बोल बुलावै, हरे आपे पंच तत् बिस्थारा। विच तातु पंच आप पावै, जन नानक सतगुर मेले आपे। हरे आपे झगर चुकावै, बैराड़ी महला चौथा। जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोट अंतर के पाप सब खोवै। हर भव जल पार उतारा रहाउ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निर्भउ निर्वैर निरंकार। हर निकट बस्त कछ नदर नावै, हर लादा गुर विचारा। हरे आपे साहो सराफ रतन हीरा, हरे आप किया पा सारा। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम बिहाजे, सो साहो सच्चा वणजारा। बैराड़ी महला चौथा, जप मन हर निरंजन निरंकारा। सदा सदा हर त्याई है सुखदाता, जा कांत न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट मह उर्द ता लिव लागा, हर राखै उदर मंजारा। सो ऐसा हर सेव हो मेरे माना, हर अंत छडावन हारा। जा कै हिरदय बसया मेरा हर हर, तिस जन कौ करहो नमस्कारा। हर हे हर कृपा ते पाईऐ हर जप, नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर हर नाम नित त्याए, जो इच्छा है सोई फल पावै, फिर दुख न लागै आए। रहाउ सो जप सो तप सा ब्रत पूजा, जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्री सब झूठी, एक खिन मह बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्ब कल पूरा, किछ कीमत कही न जाए। नानक सरन तुम्हारी हर जियो, भावै तिवै छडाए। राग बैराड़ी महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। रहाओ जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग दिलंग महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरपहो निर्वैर, अकाल मूरत जूनी सै भंग। गुर प्रसाद यक अर्ज गुफतम पेस तो, दरगोस कुन करतार। हका कबीर करीम तू पे बेऐब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी, तह हकीक दिल दानी। मम सर मुए अजराइल गिरफ्तार है, दिल हेच नंदानी। रहाउ जन पिसर पदर बिरादरां, कस नेस दस्तंगीर। आखर ब्यफतम कासना दारद, तू सवद तकबीर। सब रोज गस्तम दर हवा, करदेम बदी ख्याल। गाहे न नेकी कार करदम, मामी चिनी अहवाल। बद बखत हम चो बखील गाफिल, बे नजर बेबाक। नानक बगोए द जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। तिलंग महला पहला, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना पया तीत। कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीता। तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भिख्या पाए। रहाओ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना। चंदन भगता ज्योत नेही, सर्बे परमल करना। के पट भांडा कह न कोए, ऐसा भगत वर्ण मह होए। तेरा नाम निवे रहे लिबलाए, नानक तिन दर भीख्या पाए। तिलंग महला पहला, कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एहो तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरा कंतन पावै चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजा जाए। हौ कुरबाना जाओ मेहरबाना, हौ कुरबाना जाओ, हौ कुरबाना जाओ। तिना कै लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा नाओ। तिना कै हौ सद कुरबाना जाओ। रहाओ काया रंगन जेत ही है प्यारे, पाइया नाव मजीठ। रंगण वाला जे रंगै साहिब, ऐसा रंग न डीठ। जिन के चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास। धूड़ तिना की जे मिला जी कहो, नानक की अरदास। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤਾ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ ਹੇ ਆਪਣੜਾ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੇ ਹੇ ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਟੂਡੇ ਹੇ ਪੈ ਕੀ ਦੇਹ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵਕਾ ਕਰ ਸੀ ਗਾਰੂ ਤਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਖਿਚ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਣੇ ਆਣੀ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਮਾਨੀ ਹੈ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਹੈ ਤੋ ਚਰਣੀ ਚਿਤਲਾਈ ਹੈ ਸੋ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਸਭ ਪਰਮਨ ਲਾਈ ਹੈ ਏਵ ਕਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋਹ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸੋਹ ਪਾਈ ਹੈ ਉਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਹੁ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਬਰਾਈ ਐ ਸਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਹਿਨ ਸਭਾਏ ਸਮਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਏ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਣ ਕਹੀ ਐ ਸਾ ਸਿਆਣੀ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਹੋ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜਾ ਸੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜਾ ਕਤੇਬਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰਹਿ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਪੀਰ
1: ਕਰ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਊਨ

अपार अगम अगाध ऊच अपार जो तुत सेवै तिन पौ दुख नाय गुरु प्रसाद नानक गुण गाय जो दिसै सो तेरा रूप गुण गुण निधान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन दा पिया तिस को बलिहार तिसकै संग तरै संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत जना की बांछो तूर तलंग महला पंजवां घर पहला

रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे में दीप। खुद खसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए दिन रहन जे तो अरादे सो क्यों दोजक जाए अजराइल यार बंदे तिस तेरा आधार। गुण है उसके सगले आपू तेरे जन दे कहंदे दार दुनिया चीज फिलहाल सगले ससुख तेरा नाम गुरमिल नानक पूजिया सदा एक सगाऊं तिलंग महला पंजवां। मीरा दाना दिल सोच मुहब्बते मन तन बसे सच साह बंदी मोच रहा हो दीद ने दीदार साहिब कसनी इश्का मोल। पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा अतोल दस्तगीरी दे दिलावल तू ही एक करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक। तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन किया तिन देखिया क्या कही रे भाई आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई। राय सा प्यारे का राय सा जित सदा सुख होई रहाओ जिन रंग कंत न रावे आसा पछो रे ताणी हथ पछोड़े सिर तुण जब रहन विहानी। पछो तावा ना मिले जब चूकेगी सारी ता फिर प्यारा रावया जब आवेगी वारी कंतलिया सुहागनी मैं ते वधवी ए से गुण मुझे न आवनी कह जी दोस्त रे। जिनी सखी कन सौ जरावया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेनती करूं लेओगी पंथ बताए। हुकम पछाणे नानका तो चंदन ला पौ चंदन लावै गुण कावण कावण करे तो प्यारे को पावै जो दिल मिलिया सो मिल रिया मिल कही है रे सोई जे बो तेरा लोचिया बाती मेल न होई। तात मिलै फुन तात को लिव लिवै को तावै गुर प्रसादी जानिया तो अनुभव पावै पाना वाड़ी होए कर खर सार न जाने। रसिया होवे मुस्क का ता फूल पुछाने अप्यो पीवे जो नानका भ्रम भ्रम समावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे। तिलंग महला चौथा अरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुर सिखाए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। रहाओ हर के गुण हर भाव।

नानक तारे सोए। सोही मल्ला पहला कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद उजल कह चलखना घुट मकालड़ी मस धोत्या जूझ न उतरै जे सो तोवां तिस सज्जन से ही नाल मैं चलद्या नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन राहो कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां ठठियां काम ना आवनी विचों सखणियां बगां बगे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुट कुट जियां खावने बगे ना कहियन सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन सेफल काम न आवे ते गुण मैं तनहन अंदले पार उठाया डूगर वाड बहुत अखी लोड़ी ना लहा हो चढ़ लंगा कित चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुटे जित सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ लाज तलंग वेहला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सदरंग ठोला रहाओ साजन चले प्यारिया को मेला होए जे गुण होवे गंटड़िया मेलेगा सोई मिलिया होए न मिछड़ा जे मिलिया होई आवा गुण निवारिया है साचा सोई ओ मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सहके अमृत बोला नानक है सहेली हो सो सचा सो खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम मारा सूही मल्ला पहला जिनको भांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाए सर पर तार सी तिना मिलिया गुर आए जिन को लिखिया अमृत हर का नाओ देवे दिखिया चल सतगुर पाए पवे न भीखिया जाको मैल दूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाए मूले पुछ तिस चुटे हर के बोल साहेब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोय ढायो सारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शी चंदरी करम होए सूही मल्ला पहला भांडा हच्छा सोए जो

सुन जपाए जे को भय अलाय रहाउ। जैसा भी जय सोलण जो खट्टे सो खाए अगे पुछना होवी जे सणनी सण जाए तैसो जैसा कंडिया जैसी कार कमाए। जो दम चितना आवे सो दम बरथा जाए एतन वेची मैं करी जे को ले विकाए नानक कम न आवे जे तन नहीं सच्चा ना। सुही मल्ला पहला कर सतवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जोग न खंथा जोग न डंडा जोग न पसम चढ़ाई है जोग न मुंदी मोड मुंडाए जोग न सिंगी वाई है अंजन माए निरंजन रही है जोग जोग इव पाई है गली जोग न होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहा। जोग न बार मड़ी मसाणी जोग न ताड़ी लाई है जोग न देश संतर पवे जोग न तीर्थ नाही है अंजन माए निरंजन रही है जोग जोग इव पाई है सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे धावत वर जराई है निजर चरै सह तिन लागे घर ही परचा पाई है अंजन माए निरंजन रही है जोग जोग इव पाई है। नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौंदर पोपत पाई है।

अंत न जाना। तू जल तल में अल पर लूना लीना, तू आपे सर्व समान रहाओ। मन तारा जी चतला त्री से शराब कमावा, घाटी पीतर सो सो तोली इधर चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे आपे आवन जारा। अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नान करे दा क्यों कर मूड़ा पावे। राग सोही मल्ला चौथा घर पहला एको ओंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरियां, सब चूका डर जम के मेरे मन गावो राम गुण गावो राम नाम हर के। गुर तुठे मन प्रभु दया हर पी आरस घट के रहा। सत्संगत उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभु के हर कृपा तार। मेलो सत्संगत हम तो वह पग जन के राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के। हर अमृत हल जर पाया सब लाती तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर हम विच उसर गुर के। जन नानक पार प्रयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के। सूही मल्ला चौथा हरार ना भजो पुरखोत्तम, साबिन से दर्द दलगा भोजन वरना मेट्यो गुर शब्दी। हर अस्त्र से सुख समगा मेरे मन पज राम नाम अत फिरगा। मैं मन तन अर्पत रियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महंगा रहा। नरपत राजे रंग रस माने बिन नावे पकड़ खड़े, सब कलगा पा धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा। हर राख राख जन जन कर्म तुम्हारे, शरणागत पुरथ पुरथ पलगा। दर्शन संत दे सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम मिटो सद घूमगा। सूही मल्ला चौथा हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग। गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बौड़ न होवे भंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेश यार भेटिया रहो निसंग रहाओ। मुंद इयानी मन मुखी फिर आवन जाना अंग, हर प्रभु चेतन आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल परे दो चारिया, हर रखो अंगी अंग। अगुर अमृत सरनो लाया, सब किलव थलके किलव सब लाथे किलविक पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु सा संगत मेलो संग। मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही मल्ला चौथा हर हर कपट कर हर हर करें नित कपट कमावें, हृदय शुद्ध न होई। अन दिन कर्म करें बो तेरे सुपने सुख न होई। ज्ञानी गुरबिन भगत न होई, कोरै रंग कदे ना चढ़े जे लोचै सब कोई रहा। जाप तप संजम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग न जाई। अंतर रोग मह अभिमाना दूजे भाई को आई, बार भेक बहु चतराई मनुआ दै दिस्तावै। होमै व्यापै शब्द न चीनै फिर जूनी आवै। नानक नदर करे सो बूझै, सो जन नाम ते आए। गुर प्रसादी एको बूझै एक समाए समाए। सूही मल्ला चौथा कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोद खुजाई। हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर सांत वसाई। तिसना अग्न बुझी खन अंतर, गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई। हों हार प्रभ प्यारा ढूंढ टूंढाई, सत्संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लखे हर पाई, गुर नानक तुठा मेले हर पाई। सूही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर नाम समाए। हर रंग राता मर रंग पाणे, सदा आनंद रहा दिन राती पूरे गुर के शब्द समाने रहाओ। हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई। मनमुख मुग्ध नर को राहोए, जेसो लोचै रंग न होए कोई।
ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜੇਵਾ ਹਰ ਰਸ ਰਹੀ ਅਗਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੈ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਹਰ ਰਸ ਜਨ ਚਾਖੋ ਜੇ ਪਾਏ ਤੋ ਕਤ ਆਨ ਰਸ ਸਾਧ ਲੋਭਾਈ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਾਖੋ ਉਰਧਾਰ ਹਰਸ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰ ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਖ ਨ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰੈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਏਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੀਚ ਜਾਤਰ ਜਪਦਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਕਰਜ ਸਜਾਏ ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਸੁਣੋ ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੂਪ ਹੂ ਸਭ ਲੈ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਇਕ ਗਾਏ ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਪਿਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ ਅਨਾਮ ਦੇਵ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲੋਕ ਚੀਪਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਏ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਛ ਦੇ ਛੋਡੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਓਲੀ ਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਖ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਤਿੰਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਅਣਦਿਨ ਪਰਸੇ ਸੇ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਤਿੰਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਲਾਰਾ ਤਿਨ ਕੀ ਵਕੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ ਤੁਰ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਉਨ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਕਾਰਾ ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਿਰ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿ ਪਵੈ ਇਸ਼ਾਰਾ

वस्त्र गहने बने सुहावे धन सब कुछ पावे जा फिर कर आवे गुण कावन कर कंतरी जाया बस कर लीना गुरु परम चुकाया सब ते ऊंचा मंदिर मेरा सब कावन त्यागी प्रो प्रीतम मेरा प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज विशाही सरद पारा नव रंग लाल सेजन नव रंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन सुख पाया सोही मल्ला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रभताए खोई तो चरियो देखो पै जाई सुनत सदेसो प्रैग्रह सेज विशाई परम परम आयो तो नदर न पाई केन बिद हीरो धीरे समान निमानो मिल साजन हो तुल कुर्बानो राहो एका सेज विशी तनकंता तन सोती फिर सद जागंता पियो मधुरो तन मधवंता तन जागे जय पिर बोलंता पही नरासी बहुत दिन लागे देश दसंतर मैं सगले झागे खिन रैन न पाव खिन बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिले सुभागे पहो कृपाल सा संग मिलाया बूझी तपत करें पिर पाया सर्व सिंगार हुण मुझे सुहाया कहो नानक गुरु परम सुखाया जा देखा तै पिर है पाई खोल कपाट तमन ठहराई रहाओ दूजा सूही मल्ला पंजवा क्या गुण तेरे सार संभाली मुंदर गुण के दा तारे बै खरीद क्या करे चतराई ए जी ओपन सब थारे लालन गीले कृत प्रीतम मनमोहन तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ प्रभ दाता मोहि दीन बिकारी तुम सदा सदा उपकारे सो कुछ नाई जे मैं ते हो वह मेरे ठाकुर अगम पारे क्या सेव कमावो क्या कैरे जावो बिद कृपा मो दरसारे सारे

सालार आव। जीवन रूप सिमरन प्रभु तेरा जिस कृपा करें वसें तिसने राजन की भूख तेरा नाम आर तू दाता प्रभु देवन हार राम रमत संतन सुखमाना नानक देवन हार सजाना सुई मल्ला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट न धारत मिथ्या मोह बंधे नित पारच माधवे पज दिन त्रैणी चमन पदार्थ जी दर सरणी राव। करत बिकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत भरण पोखण संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समराथ गोचर स्वामी उधर नानक प्रभ अंतर जामी सुई मल्ला पंजवा साध संग तरै पै सागर हर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सबन से गुरपुर मल पाप तजाय रहाओ जीवन पदवी हर का नाव मन तन निर्मल साच सुभाव। आर पैर पर भ्रमते आया पुरब लिखित होए था पाया शरण पे जब दीन दयाला नानक जांचे संतर वाला सूही मल्ला पंजवा घर का काज न जानी रूड़ा चन झूठे धंधे रचियो मूड़ा जित तू लावे तित तित लगना जा तू दे तेरा नौ जपना रहाओ। हर के दास हर से तीरा तेरा अमर सैन अंधन माते बाप कर प्रभ आपे कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधर स्वामी प्रभ कृपा तारे नांदा नानक दास हर सैन तुवारे सुही मल्ला पंजवा संत प्रसाद निचल कर पाया सर्व सुख पिन नहीं डोलाया गुरु त्याय हर चरण मन चीने तां ते करते अस्तर की निराव। गुण गावत अच्युत बनासी ता के काटे जम की फांसी कर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सुही मल्ला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी जो जो जपत की का तो वह हर हर नाम नत रसन बखानी राव कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन में प्रवेशा साधु तुर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर शरणाई।

दर्शन को लोचा सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई श्याम सुंदर तारनी नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बिछुआ करतक साई निर्दय जंतस दया न पाई अनक जन्म भी तिन परम आई कर वास न देवे दुत्र माई दिन रैन अपना किया पाए किस रोज न दोष न दीजे कृत पवाई सुन साजन संचन पाई चरण सरण नानक सरण गत पाई राग सुई मल्ला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भली सुहावी छा परे जा मैं गुण गाए किति का दिन धौल जित हर पर बिसराए रहा आनंद गरीबी सा संग जित प्रचित आए जल जाओ ए बटपन जल जाओ ए बटपना माया लपटाए पीसन पीस ओढ़ कामरे सुख मन संतोख आए ऐसो राजन किते काज इतने तृपताए नग्न फिरत रंगे के शोभा पाए पाट पटंबर बिरत्या जे रच लो भाए सब कुछ तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सा सा सिमरत रहा नान गुणदान पाए सुई मल्ला पंजवा हर का संत प्राण तन तिसका पनहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा राव केसा का कर बीजना संत चौट रावो शीस निहारो चरण ताले तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो नींद दीन की न्यायी ताज अभिमान सरणी परो हर गुण निदगाए लोके पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन मै सिंचो बंदो वार वार चितमो मन आशा करो जन का संग मांगो नानक को प्रभ दया कर दास चरणी लागो सुही मल्ला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताऊ मैं पाऊं राख ले ओ बिके जियो दे अपना नाम राव जाते ना ही को सुखी ताके पाशे जाओ छोड़ जाए जो सगल को फिर लुटाओ करो कृपा करुणा ते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सुई मल्ला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहर लारना जब मन गोबिंद एक और नाई को लेकर संत लाग मन चाट दुबदा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया मन विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया ना मरिया ना जरिया कीर्तन जुरिया बोबित फिरिया पर कोई हरिया बिकना करिया अब साधु संग परिया हर द्वारे करिया दर्शन करिया नानक गुर मिलिया बहुर न फिरिया सोही मल्ला पंजवा रास मंडल कीनो अखारा सगलो साज रखियो पासारा बोबित रूप रंग आपारा पे कै खुशी भोग निहारा सब रस लैत बस्त निरारा बन चेण नाय मुख न मसारा कहत न जाय खेल तुम्हारा दान करेन संत चरणारा सुही मल्ला पंजवा जो मैं आया सरनी तो मैं आया सरनी आया भरोसे आया कृपा आया जो पावे तेरा को स्वामी मार गुरे पटाया राव महान दुत्र माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो तर्म राया ग्रह आम दुख पाया पावक सराया गही उठ सदाया नानक कर त्याया अब मैं पूरा पाया।

मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल शरणाय नारायण दीना नाथ भगत पारायण रहाव। आ नाथा नाथ भगत पै मेटन सा संग जमदूत न पेटन जीवन रूप अनूप दयाला रमन गुणा कटिया जमजाला अमृत नाम रसन नित न्यापे रोग रूप माया ना व्यापे। जप गोबिंद संगी प्रभ सब तारे पोत नाही पंच पटवारे मान बच क्रम प्रभ एक ते आए सरफला सोई पुंजन पाए धार अनुग्रह प्रभ अपना अपना प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिन अवरना कोई राग सोई मल्ला पंजवा अष्टपदियां करनोवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन डिठिया मन रहसिया क्यों पाई है तिन संग जियो संत सजन मन पितर से पायन प्रभ सु रंग जियो तिन स्यों प्रीत न तुटे कुम न होवे भंग जियो पाप राम प्रभ करा दया गुण कामा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सजना नाम जपत जपै मन मित जियो राओ वेखे सुनना जानी माया मोया अंध जियो काची दया वनसिणी कूड़ करता कमावे तंत जियो। नाम ते आवै से जिन चले गुरपुरे संबंध जियो हुक्मे जुग में आया हुक्म चलन हुक्म संजोग जियो हुक्म परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। विष्णु करता विसरे ते फिर छोड़ा जोग जियो अपने प्रभाण दरगह पैदा जाए जियो ऐथे सुख मुख उजला इको नाम ते आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेवा सतपाए जियो थान तनंतर राव रे सर्व जिया प्रतपाल जियो सच खजाना संचया एक नाम तन माल जियो मन ते कबनो मिसरे जा आपे हो दयाल जियो। आवण जाना रह गए मन मुठा निरंकार जियो ता कांत न पाया ऊंचा अगम पार जियो जिस प्रभ अपना विसरे सो मर जमे लख वार जियो सच्चा साच ने अंतर प्रीतमा जिन मन मुठा आप जियो। हुण सांझी तिन संगक बसे आठ पैर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेसरे बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करना तू है एक अनेक जियो तू समरा तू सरम है तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सुई मल्ला पंजवा अष्टपदियां कर दसवां काफी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जे भुली जे चुकी साई पीत हिंजी कांडिया जिन्ना ने दुजाने लगा चूर मरो से वांडिया हो ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा ए महिंजा आसरा राव। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझ उपर बोमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान दा तू जावे खाल ए पाए मुँह दातड़ी नितने दे रखा संभाल। पाव जलाई पंध तो नैणी दरस खाल सरवणी सुनी कहानियां जे गुरती व्या कृपाल कितनी लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हो साहो कहन सका गुण तेरिया। सहियां तो असंख मंजो हब वधाणिया एक भूरी नदर न्याल दे दस रंग माणिया जे डिठै मन तीरे किल विखंजन दूरे जो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा पर पूरे। होए नमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूर्व लिखिया पाया आनंद संसहाय सुई मल्ला पंजवा सिमरत बेद प्राण पुकारण पोथियां ना बिना सब कूड़ गाली होशियां। नाम निदान पार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसैर होए राव मोह बात अंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल नाम सुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर अवतार माया तंदिया सोधत सोधत सोध तत विचारिया ना बिना सुखनाए सर पर हारिया। आवे जहां अनेक बर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोमी भरम ते जिनको भेद दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजें कोड़ा संख बहुत अनंत के जिस बुझाए आपने।

दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले भाईड़े जुग कह सुकार कमाए जियो। त्यागै मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। इं पावे हर दरसावड़ा ना लगे तत्ती वाहो जियो। आप बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बोड़ ने तरसना भुखड़ी हूं रजा तिप्त गाय जियो। जो गुर दी सह सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। राग सुई छंत महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पर जोबन मैं मत पेड़ कर पावनी बलराम जियो। मैली अवगुण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो। गुर सार न जानी भरम भुलानी जोबन बाद गवाया। वार घर दर सर दर्शन नहीं जाता फिरका मैं फिरका सहज न पाया। सतगुरु पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी। नानक बाल तन राडे पा बिन पिर धन कुमलानी। बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो। रव रया जुगचार त्रिभुण बाणी तिसकी बलराम जियो। त्रिभुण कंतर वैसो अगण अवगणवंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रया पर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैं लै वैसे। नानक मैं वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाए हम भी वंजा साहोरे बलराम जियो। साहा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो। किरत पया करते कर पाया मिट न सके कोई जानी ना उन्दरे ने केवल राव रे आते लोई माए नरा सी रोए रे वन्नी। रोए विशुन्नी बाली बाला है ते नानक साच शब्द सुख मैली गुरचरणी प्रभ चेते। बाबल दितड़ी दूर ना आवे घर पे है बलराम जियो। रैसी वेखा दूर पर रावी घर सोई बलराम साचे फिर रो